0: जब आए सब गो भयो जन्म धरा जग आए।
1: अब मैं कथा संक्षेप के सबू कहत सुनाए।
0: अब बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर कर बचन।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दे साहो जिस पास बैठिया सो ही है।

पूरे अर सहो कुर सहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साहो मल जन्म जन्म दी कटी है तुद डिठे सच्चे पाते साहो मल जन्म जन्म दी कटी है।

माया कारण श्रम आत करे सो माया लै गाडै धरै आत संचै समझै नहीं मूड़ तान धरती तान होए गयो तूड़ काम काम क्रोध तृष्णा आत जरै साध संगत कबहू नहीं करै कहत नाम देव ताची आन निरपै होए भजिय भगवान बदहु की ना होड माधव मोसे।

0: तै नर क्या पुराण सुन कीना।
1: सत संगत जीओ, जो अगे वाला शब्द प्रारंभ होया है, भगत रामानंद जी दे पास एक उपदेश लैण वास्ते आया करदा सी। भगत जी दे पास आउंदिया आउंदिया उन्हें कुछ संगत कीती ते पुराण आदिक भी पढ़िया होया सी। पढ़ के, विद्या पढ़ के अते संगत करके फिर भी किते भैड़ी संगत उन्हूं हो गई, दुराचारियां दी संगत दे विच चला गया अते उहदा सुभाव विगड़ गया। कहन तो भाव के बुरे कर्मां दे विच पै गया, निंदिया चुगली ईरखा बखीली अते भैड़ी संगत करनी, विभचार करने इत आदिक जदों ऐसे कुकर्म करन लग पिया ता भगत जी दे पास जो संगत आया करदी सी उन्हां नूं पता लगा। उन्हां ने एक बार उसे ही मनुख नूं मिल के कहा कि चल भगत जी दे पास, पहला तू संगत दे विच आया करदा सी, विद्या पढ़ी होई सी, पर हुण तू बुरे कर्मां दे विच पै गया, चल भगत जी दे पास, भगत जी तैनू उपदेश देणगे, फिर तेरा जीवन सुधर जावेगा। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।

0: क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूटयो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरै अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो
1: मन अविद्या साधी, साधी पाठ कस के करना, साधी ना क्लियर तो।
0: हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। छाड़ मन हर बेमुखन को संग,
2: साध संगत जीओ। भगत सूरदास जी ने एहो ही बचन उचारण कीते सन, क्योंकि जदों भगत जना ने भगत रामानंद जी ने बाणी उचारण कीती, उस समय सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने हुक्म कीता कि सूरदास जी, भगत जी हुण तुसी अपनी बाणी उचारण करो। उचारण करन लगे इन्ना ही बचन उचारण कीता, छाड़ मान हर विमुखन को संग, हे मेरिया मनाम, जेड़े परमात्मा तो बेमुख लोग ने ना, भाव के भैड़े पुरश ने, उन्हों का संग छड़ के गुरु की संगत दे विच आ। अपने मन दे प्रथाए जदों भगत जी ने बचन उचारण किते, इन्ने प्रेम दे विच भेज के बचन उचारण किते कि भगत सूरदास जी की समाधि लग गई। जदों समाधि लग गई, थोड़ा समा देख के सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने भगत जना दे विच बैठिया होया ये बचन किते कि इन्हां दी समाधि इसी ही तरह लगी रहन दिओ। इन्हां ने प्रेम दे विच ये बचन उचारण किते अते हुण समाधि दे विच लीन हो गए ने। परमात्मा दे प्रति इन्हां दा प्यार ही ऐसा है, इन्हां नूं समाधि दे विचों हुण उठाउणा नहीं है। असी इन्हां दे प्रथाए इन्हां नूं सरोपा देंदिया होया, सरपाओ देंदिया होया, इन्हां दा सत्कार करदिया होया, असी अपने मुखारबिंद तों शब्द उचारण करदे हां। अगे वाला जिहड़ा शब्द है ना, इह सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने सुभाईमान मुखारबिंद तों उचारण कीता। वैसे इन्हां दा इतिहास बड़ा लम्मा है, वड्डा है। बस सूखम रूप दे विच ही दास ने बेनती कीती है, आओ जी सुनीए।

0: तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन चोक रहाओ। दर्शन पेख पए निर्भिखई पाए है सगले थोक। आन बस्त स्यो काज न कछुऐ सुंदर बदन अलोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत ज्यो कुष्टि तन जोक। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो दीनो एहो परलोक।
1: साध संगत जी ज्ञानी जी दी रसना तो आप जी ने सुनिया है। सो थानका रूप पहला सूर दा अखीरली पंक्ति ते गल स्पष्ट हो गई। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो जदों भगत सूरदास जी गुरबाणी उचारण करन लगे तां उस समाधि च चले गए। मन परमेश्वर दे हथ दे विच चलिया गया ते गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने संपूर्ण शब्द उचारण किया। और जिहड़ा ये शब्द साध संगत जी करतारपुर साहब वाली बीड दे विच इक्को ही पंक्ति इन्ना ही शब्द जिन्ना आप जी पढ़ रहे हो इन्ना इन्ना ही शब्द जिहड़ा वो करतारपुर साहब वाली बीड दे विच है। जे भाई बन्नो जी वाली बीड वेखी उहदे विच पूरा अगे तक एक शब्द दिता गया है पर करतारपुर साहब वाली बीड दे विच इक्को ही तुक है ते बाकी जेड़ियां होर अगलियां तुकां हन उह कित्थों लिखी लईआं भाई बन्नो जी ने उहदा कोई इतिहास नहीं। पर गुरु दसवें पातशाह महाराज दीआं वल्लों लिखाई गई बीड दे विच वी इह इसे तरां साध संगत जी दर्ज है।
0: सारंग कबीर जी ओ इक ओंकार सतगुर प्रसाद। हार बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुलहा बांध हो क्या परवासा धन का कहा बिसासा इस भांडे का इतना को लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो तूर बांछो सब जन का कह कबीर सुनहो रे।

चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गए काया टल पाए ताके पाछे कोय न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमह नाम निरंजन अंस दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सच नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो न छीजे देह अंतकाल जम मारे ठेह ऐसा दारू खाहे गवार जित खादे तेरे जाहे विकार रहाओ राजमाल जोबन सब छाम

जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहिया समाई एकस बिन मैं अवर ना जाना सतगुर दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੈਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਯਾਤਰੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਨਿਮਿਆ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੜਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ,
धन गोपाल धन गुरुदेव। हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग है, धनता दे योग है, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते। कबीर खुद कहते ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे, एले अपनी माला। भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी उज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नू समझे कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रकत बिंद करने में आ, तन किवें बनदा लहू तो बिंद तो, ते लहू ते बिंद किवें बनदा है, रोटी तो और किस तो बनदा है, भोजन तो। ये तन रोटी तो बने है, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जी भी नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जिहड़ी प्रबल चिंता हुंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करदे आ, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी हुंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं हुंदी। पानी दे ते दरिया भी चलदे ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलदे। पानी दे ते सरोवर भी हुंदे ने, झीलां हुंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। होर भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है। हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है। नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच है। महाराज कहंदे ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंद न धीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह। मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक। शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनूं फिर कहण देना तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया,
माखी रकत पिता बिंद आरा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बनया रोटी तो, तन बनया रोटी तो, ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने होर कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे, रिज़क दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दीआं रोटियां, अज दीआं नहीं, सत्तां पीढ़ियां दीआं। चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहती है, कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर। ना कर चिंत, चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया है, जगत बनाया है, रिजक दी चिंता ओ करेगा। तू उद्दम ते करना है, चिंता नहीं करनी। रिजक लभना ते है, चिंता नहीं करनी। ना कर चिंत, चिंता है करते। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए ते घर वाले नु सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह का इसका इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा का घर है, असी उसके जीव, उन्हों फिक्र है, उन्हों फिक्र है। वो साड़ी चिंता दे चे, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साढ़े नाल संबंध जोड़िया हुआ है, सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनों होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदे गमे रोजी मखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी मखुर, मजन और आ के दफ्तर रा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुध पहले बन जाता है। के पेशे अस्तिफल ए जद, तिफल कहते ने बच्चे का, के पेशे अस्तिफल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुध पहले बन जाता है, बच्चे का जन्म बाद दे च आता है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लेंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरवाणी फिर इस तरह बयान कर दिए, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरवाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तित मन प्रगट आया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती है, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभा आया,
जिथे विश्वास पूरा बच जाए, विश्वास डोलदा है, भरोसा डोलदा है और सारी जिंदगी डोलदा है। अरदास करना सतगुरु सानू सिखांदे ने, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। की डोलदा है? भरोसा, सिदक डोलदा है, रोज रोज डोलदा है, भरोसा नहीं बजता। अज मिले है पता नहीं कल मिलना है कि नहीं, मैनू मिले है पता नहीं पुत्रां नू मिलना है कि नहीं, पुत्रां नू मिले है पता नहीं पोतरियां नू मिलना है कि नहीं। जिंदगी लंघ जाती है रिजक की चिंता च, बगौर मुताला करना उहदा एक कारण है। मनुख जीवदा जो तन ते तल ते पिया, जे तन दे तल ते जी रहा है ते तन ते रोटी है, भोजन है, बनिया भोजन तो है जीवेगा भी भोजन ते आस, बनिया रोटी तो है जिंदा भी रहेगा रोटी दे आसरे ते। हुण मैं अर्ज करा, ये मन रोटी तो नहीं बनिया, ये जीव आत्मा रोटी तो नहीं बनिया, ये संसार का हिस्सा नहीं है। ये तन रोटी तो बनया संसार का हिस्सा, ये ठीक है। चूंकि प्रभु ने हर मनुख का रिजक उदे कोल नहीं बनाया, लभना पैंदा है, इस वास्ते मनुख ने बड़े उद्यम ते उपराले कीते ने और इस तो बड़ी तामीर होई है। सारी तामीर संसार दे च मनुख कोलों करवाइए दो रोटियां ने, ये भी मैं अर्ज करते, रेलां ने, मोटरां ने, गड्डियां ने, सड़कां ने, महल ने, माड़ियां ने, फैक्ट्रियां ने, कारखाने ने, मसला ते दो रोटी दा और है कि सारी भज दा। जिथे मनुख है उथे ही रोटी आउंदी, फिर मनुख ने कुछ भी नहीं करना सी, रोटी लभनी पैंदी है। जहां दाणे है तहां खाने है, नानका सच ए। परमात्मा ने सारिया के दाने खिलेर रख दिते ने, लब अपने दाने लब ले, अपना चोगा लब, अपने पशुओं के दाने भी खिलेर दिते ने, पंछियों के भी खिलेर दिते, लभदे फिरदे ने पंछी, लभदे फिरदे ने पशु, लभदा फिरदा है मनुख, दाने ही लभदा फिरदा और की लभदा फिरदा। जहां दाने, क्योंकि जिथे है उथे दाना नहीं है, उथे रोटी नहीं है। जहां दाने, जिथे दाने पे ने, जिथे रोटी पई है। जहां दाने तहां खाने, कदी बगौर मुताला करना, मनुख का जन्म किथे हुंदा है, जीवदा किथे है और रिजक की तलाश किथे किथे करता है। सारी पंछियों की दौड़, सारे पशुओं की दिन भर दौड़, सारे मनुखां की जीवन भर की दौड़, मसला रोटी दा और कुछ भी नहीं है, रिजक दा। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहते ने सच्चाई है, तन बनिया रोटी तो है, जीवेगा रोटी दे आसरे ते, मन रोटी तो नहीं बनया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा, कहो कबीर ए राम की अंश। रोटी मन की लोड़ नहीं है, भोजन जीव आत्मा की लोड़ नहीं है, ये भी मैं अर्ज करता हूं। पर साड़ा जीवन, जीवन चेतना तन नाल इतनी सम्मिलित हो गई है, इन्हें भी जीवन का आधार रोटी मन लिया है, भोजन मन लिया नहीं। तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। दूसरा,
ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦੀ। ਅਸਤਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ। ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਖਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਛੇ ਖਾ ਲੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਹਾਰ ਰੋਗ ਆਹਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਭੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਧਨੰਤਰ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, 90% ਆਹਾਰ ਰੋਗ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾਰ ਰੋਗ, ਆਹਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਆਹਾਰ ਦਾਰੂ, ਆਹਾਰ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਦਕ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नूं मन ने अपनी लोड़ समझ ले तो उहदे नाल की आउंदा है। तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां ने। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें इकट्ठे रहणगे, लोभ ते पाप दोवें इकट्ठे रहणगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं आउंदा, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह दईए, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल सृष्ट को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया। कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। ये कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरू वाहिगुरू दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा, इस चक्कर च ना पैणा। इह मन वास्ते भोजन मेरे सामने पिया, पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ां, भाव बुरकी नूं मुंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या होया भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़दा रहे बाणी। कहिंदे ने, मैनूं मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चें, चिंता दे चें, हंकार दे चें, विकार दे चें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सब, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है,
जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन दे च भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है। पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इस ते भी शुकराना किया। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़े होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहे हैं। वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनूं प्रेरदे हैं नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, कहिंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तन धोने जबान दे च ਉਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਤੰਤੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੀ। ਜੋ ਤੰਤੂ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, रोग करके कमजोर हो गए ने, शिथिल हो गए ने, स्वाद नहीं आता। कहिंदा स्वाद नहीं है। भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आवना, इस गल दी पहचान है तन रोगी है, बीमार है। हुण दूसरा पहलो, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया है जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी नहीं। किधरे एक दिन रोटी नहीं खादी, सौआं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा रोटी खाने की वेल नहीं मिली, नहीं खाते, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करते हैं, महीना महीना नितनेम नहीं किया, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं किया। ना घर वालों अफसोस, ना इनू अफसोस, क्यों? ना घर वालों भुख लगती है भजन की, ना इसनों लगती। घर वाले भी रोगी, ये भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पै जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहिंदे ने सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना
ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਮੁਨਸਬ ਸੁਧ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਔਗਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਤਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਈ ਦੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,

दूसरा की जानता है तेरे कई विचार ने, तू की सोचता रहना। यही जो मैं अर्ज कर दिया, 100% लोग दूजियां बारे गलत फैसले करते, गलत फैसले करते। ये पापी है, ये पुन्नी है, ये तो कहण मात्र गल्ला होंगी, पर महाराज कहते ने कहण मात्र खेड नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करते हैं, जिस कर्म दे च मन आउंदा है, वो अंदर लिखे आ जाता है, उसे वक्त लिखे आ जाता, संस्कार बन जाता है। जिस कर्म दे च मेरा मन है, उस कर्म दे संस्कार बन जाते हैं। जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है, उसके संस्कार नहीं बनते, अंदर लिखिया नहीं जाता। चोरी अंदर लिखी जाती है, क्यों? उसदे च मेरा पूरा मन आउंदा है, समाज का डर है, कानून का डर है, बाणी का पाठ मेरे अंदर नहीं लिखिया जाता, ना मेरी सावधानी आती है, ना मेरी एकाग्रता आती है, ना समाज का डर, ना कानून का डर। किसी भी शुभ कर्म के अंदर संस्कार नहीं बनते, बुरे कर्मों के बनते, क्योंकि बुरे कर्म नो मनुख पूरे मन नाल करता है। समाज का डर है, कानून का डर है, शुभ कर्म नो मनुख पूरे मन नाल नहीं करता। हर एक कह देंदा की करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं, पर जब तू झूठ बोलदा उहदे च पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं ठगदा है उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं धोखा देंदा उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब जेब कतरा किसी दी जेब कटदा उहदे च पूरा उसका मन आउंदा है। बड़ी भारी एकाग्रता आउंदी। किसी जेब कतरे ने नहीं आख्या जेब कटण लग्या मैं एकाग्र किवें आऊंगा, किसी डकैत ने नहीं आख्या डाका डालन लग्या मैं अपना मन एकाग्र किवें करा, एकाग्र हो जाता है। हर अभ्यासी ने आख्या, हर सत्संगी ने आख्या की करिए मन ते जुड़दा ही नहीं, मन ते एकाग्र ही नहीं आता। कारण क्यों नहीं एकाग्र आता? ना समाज का डर, ना कानून का डर, ते परमात्मा का डर बंदा मने ना तो गल खत्म, सारी जिंदगी कर्मकांड चलता रहेगा, होवेगा कुछ भी। ते पता है कर्मकांड किसनों कहते ने? जिस विच मन पूरा नहीं है, नहीं ये भी मैं अर्ज कर, पूरी भावना है, पूरा मन है, हर कर्म भक्ति हो जाता है, भगवान नाल जोड़ देता है। कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई यकसोई नहीं है, इतने कर्मकांड चलता रहता है। कर्मकांड जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं, अनंत जन्मा तो, अनंत जन्मा तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। ये जिहड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु का जप है, थोड़ा इसनों सुचेत करना है तो किधरे इस दे अंदर भुख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहेगुरु कहिंदा है, वाहेगुरु का अंदर संस्कार बन जाता है। जैसे वाहेगुरु का संस्कार बनता अंदर, विकारां दे बने अंदर संस्कार वो मिटते हैं, खत्म होते। ये दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या नाम का संस्कार रहेगा या काम का संस्कार रहेगा, या सबर संतोख का संस्कार रहेगा या लोभ का रहेगा, दोवें कट्ठे नहीं रहते, एक दूजे नूं मिटा देंदे ने। ये भी मैं अर्ज करते, संतोख और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपया ना पढ़िया बाणी नो तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा, जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जांदा है। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया, क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे हैं, गलतियां पूरे मन नाल करदे हैं, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा है। बड़ी सावधानी

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेत्यावन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां खालसा जी साहब तहा तहा रचा रियायत देख तिग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नो सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगा टाल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहे गुरु काल पुरखा पड़े पंथ।

0: महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नु समझना है, हस्ती नु समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जित्थों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे, तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जाता। रस्ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जीवदा है, हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करता है, वर्तों करता है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जाती है, इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होता है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला वेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे, तां वी उतनूं सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है, उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है, वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवदे ने, हिरदे दे तल ते भावना दे तल ते और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने ज्ञान कितना महान है उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना देती ठाकुर दी सेवा करी घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं ना आवां ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है नदी दे तट ते गए ने गागर खूब मांझी है इशनान कीता है गागर नू भरे है ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई मछलियां ते पै गई कुछ मेंढक सन उना ते पै गई कुछ कछुए सन उना ते पै गए आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बीठल नाम दा एक मंदिर भी है बीठल मंदिर पंडरपुर देश और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा मैं पानी भरे है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा की पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी दे च जीवन उना दा पानी दे च मरण उना दा पानी दे च सारी क्रिया पानी दे च और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने जेदे चो 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है जन्म पानी दे च है मरण पानी दे च है ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा है ये ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र विच छोटे ने बच्चे ने पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है आप कहंदे ने नहीं ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लेके आप बगिया विच गए फुल तोड़न लगे ने ते फुलां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां आप देख ले आई एकदम हैरान होए कि शहद दिया मक्खियां भी फुलां दे चों रस कढ रही ने आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने पवित्र नहीं ने इना दा रस ते भौरे ले जांदे ने इना दे चों रस ते शहद दिया मक्खियां कढ के ले जांदियां तितलियां कढ के ले जांदियां लिहाजा इन्ना फुल्लां दी माला परो के हेठ आकर मैं तेरे गले किस तरह पावा जदके इन्ना फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने तितलियां पहले ही कर लेंदियां ने शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लेंदियां ने आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हो पूज करो पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है माई गोविंद पूजा कहां ले चराओ अवर न फूल अनूप न पाओ दूध ता बछरे थनो बिडारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावा ओ ते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने फूल ते अपवित्र कर दिते ने भौरिया ने तितलियां ने शहद दिया मक्खियां ने हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नूं पिलाना है तो अपनी माता नूं आख्या गऊ चो दिओ दुध चाहीदा है नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया बछड़ा थण चुंगण लग पिया है ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहिंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा हां मेरे बच्चे पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है तो आप कहने लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा इस दुध का भोग मैं ठाकरा नूं नहीं लवाना क्यों आ नीले दूध रिधाई ले खीरन ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारो बछरे बिठल भेला काहे करो हे बिठल दस मैं की करा ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा उन्हें पवित्र कर दिता है थना दे दूध त बछरे थनो बिटा रहे हो भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने आ नीले दूध रिधाई ले खीरन ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बिटा रहे हो बछरे बिठल भेला काहे करो ए बिठल दस मैं की करा दुध ते अपवित्र हो गया इते पहले बछड़े ने पी ले ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना देच ही झूठा कर गया तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा अज पूजा नहीं हुई अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया दुध नहीं पिलाया गया आप बैठे ने सोच देच पिता नाराज होवेगा पिता औखा होवेगा इस तरह दियां सोचां दे च आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी ईबे बीठल ऊबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्व मही हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू इशनान करावा ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल विच इशनान कर रहे हैं मैं तेनू की इशनान करावा हे प्रभु जद मैं तेनू सोचया तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनू कराया जांदा है जो मैला हो जाए क्या तू मैला हो जाना है साहिब कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता तू ते उज्जल है तू ते पावन है तू ते पवित्र है मैले ते असी हो जाने सड़ा तन मैला सड़ा मन मैला हे प्रभु तू ते निर्मल है तू ते स्वच्छ है तू ते पावन है तू ते अति पवित्र है तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने इशनान ते मैं तेनू तां करावा कि तू मैला होवे पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं और तेनू की इशनान करावा तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं सागरां विच रह रहे हैं दरियावां विच रह रहे हैं झीलां विच रह रहे हैं तेनू की इशनान करावा इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया हे प्रभु जल विच तू ਮੱਛੀ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾ ਪਰ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗਊ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਈ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਬੁੱਧ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾਹ ਹਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਿਚ, ਔਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਰਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਹ ਵਿਚ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਚਹਿ ਚਹਾਣ ਵਿਚ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਾਂਝੇ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗ ਪੇਖਣੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖੀ ਅਲੋ ਖੋਜ ਨਿਰਖੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, तो गुरु का मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़का मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनदा है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचदा है। इसनु खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम का मार्ग बनेगा और राम की लीनता नसीब होगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे। और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम दे चलीन कीता, बिठल दे चलीन कीता। और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स लै सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी लै सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती

मेरा ख्याल भाई तारू सिंह की तस्वीर ही सानू सिखी कमान की जांच दस जाएगी। ओ भाई तारू सिंह पर उन्हें सचमुच उस रजा नू उस हुक्म नू खिड़े मथे मनिया। पर मैं फिर बेनती करांगा अर्थ थोड़े जे मैं कर देना थोड़ा जा आपां नाम जपना उस शहीद नू याद करके प्लीज, क्योंकि फिर कदो समा बनना है। महाराज कहिंदे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे। इतिहास में ज्यादा ज लै लिया कि जो रब करदा मना तू मन लै होए, जो करदा बस जोत तू भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। महाराज कहिंदे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे। ते महाराज कहिंदे अपनी नदर निहाल आपे लै हो लाए। अपनी नजर निहाल है वाहगुरु जी, तुसी अपनी नजरे कर्म करो, अपनी बख्शिश करो, सानू सदा ली अपने चरणा नाल जोड़ के रखो। महाराज कह रहे ने अपनी नजर निहाल आपे लेहो लाए, जन देहो मती उपदेश, जन दर ते सेवक मेनू सेवक नू ए उपदेश देओ, विचों भरम जाए साडे अंदरों भटकना भरम खत्म हो जाए। जो तुर लिखिया लेख जो परमात्मा ने तुर दरगाह चो लिखिया है, महाराज कहिंदे सोई सब कमाए, हर एक नू ओ कमाना पैंदा है। सब किछ तिस दा वस, सब कुछ ओदे खत विच है, दूजी नाही जाए होर कोई दूजी थां नहीं उस तो बिना जिहड़ी सानू संभाले। ते महाराज कहिंदे नानक सुख आनंद भय, आत्मक सुख मिलिया आनंद मिलिया पर कदो प्रभ की मन रजाए, जदो परमात्मा दी रजा नू ओदे हुक्म नू खिड़े मथे मान लिया। पर इस सलोक दे अर्थ कल बेकर्सफील्ड कल दीवान उथे वे ते मैं जरूर दोबारा इन्हां नू ते संगत च रिपीट करांगा। आओ भाई अमृतधारी होइए, जो भाई साहिब भाई रजिंदर सिंह भी कह के गए उन्हां पूरी डिटेल नाल आप जी नू दस दिता है। ते इथों दे सेवादार इत्थे सिंह सारे बैठे आ जेहड़े उस रसोई विच भी सारे इस मिशन विच सेवा कर रहे आ, आपदा बहुत धन्नवाद। ते अरदास करियो ए मिशन ए सेवा गुरु रामदास तुहाडा संगतां दा विश्वास ना कदे टुटण दे। आओ जी महापुरखां नूं भाई तारू सिंह जी नूं याद करदे आ, सारे नेत्र बंद करके जो सुनिया है बस इउं समझो कि भाई साहब बैठे आ संगत कोल खलो के सतनाम वाहगुरु दा जाप कर रही। सारे कृपा करो सतनाम वाह।

0: नहीं की थी। गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं की थे, गुरु नानक ने धूणे नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे। गुरु नानक का तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं। गुरु नानक ने केवल प्रभु का गीत गाया है, गाउण दे विश्वास है, पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गाउणा ही जप बन गया, गाउणा ही तप बन गया, गाउणा ही जोग बन गया, गाउणा ही प्रभु दा रोग बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने, प्रभु दा दर गाउंदे होया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है तो उसदे दर तक पहुंचने दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग, वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नु शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे, और आपने मनुख की दुनिया चो जात पात नु एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नु भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हां जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो किसी नु शूदर ना आखो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे पाई, जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आखिया सिर्फ जोत नाल जुड़ो, जात नाल नहीं, एक पासे रखो जात नो, जोत नाल जुड़ो। शरीर सारियां दे अलग अलग ने, असी देखते हैं एक शरीर का मास दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। मन भी अलग अलग ने, किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते ने, दो मनुखां दी विचारधारा किधरे एक हो जाती है, सारे संसार दी विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक दा तन अलग अलग है, हर एक दा मन अलग अलग है, पर सारियां दी आत्मा तो एक ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हर एक दे अंदर आत्मा वेखो वो एक है, आपका संदेश ते उपदेश भी एक है, सारे ही एक ने, सारे ही एक दे विच ने, सारियां दा मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते, सारियां दा वर्ण धर्म बेख एक ही है, और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उसे रूप विच अपने आप नू जो है रखो, और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहती है, और परमात्मा दिया बख्शिशा उन्हों मरदे दम तक प्राप्त होंदिया रहिंदियां ने। चार युगां दी विचारधारा गुरबाणी नमुख रखे तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ ਲਵੋ 17.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 58 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8840-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313, 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
4: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ